खेत वाल जा रहा सी, जाके ठाकर खूह चल रहा सी, थले रख दिता। आखे ठाकर जी ए तरबोज चंदा कर रहे, जिथे पानी दी थोड़ है, ए जट्टा खूह है, सब कुछ इथे ही मिलेगा, ताजिया सब्जियां मिल गया, नहाने की बड़ी मौज है, वेखो खूह चल रहा है, आप ही हुण इशनान करो। ते मैं नका मोड़ा मां मुक्ति गल इशनान कराया, तन्ने ने मल मल के नका मोड़ के आ गया, हुण भगवान बाहर रख दिता है। इतने चिर नूं तन्ने दी करवाली आ गई प्रशादा लैके, बड़े ही प्यार दे नाल ठाकुर नूं परने उत्ते रख दिता है। रुखा सुखा जोशी एक कृति दे करों आ गया। तन्ने ने अर्ज की, भगवान जो गऊ सूई सी उह ते हुण आप जी दे बटांदे विच पंडित जी ने लै ले गए, हुण ते आपां जो कुछ भी करो रुखा सुखा आया है उही खाना है। फिर कोई बात नहीं, दो चार महीने तक दूसरी गऊ सुन वाली है, लहरां वहरां बन जावन गियां, आओ भोग लाओ। हुण उसने पता नहीं सी भोग लाउणा है कि खाना है। काफी समा बहन तो बाद उसने स्त्री नूं आख्या, तुसीं जाओ जी घर नूं, शायद ठाकर दी संगत न होवण, तुसीं चले जावो, अजे ठाकर नवा नवा आया है, साडे घर दे बारे तो जाणू नहीं। घर वाली तोड़ दित्ती, हुण तन्ना जोधड़ियां करदा है, अर्जना करदा है, भगवान खा लो प्रशादा, वेखो मैं भी कल शाम का ही भुखा हाँ, सवेर का मैं कुछ भी नहीं खादा, दिन ढाले पै गया है, शामा पै रही हैं, वो राही राहे राहे जा रहा है। उसने सुनिया एक आदमी पत्थर के नाल गल्लां करता है, भगवान जी खाओ ना कुछ ना कुछ। उस आदमी नेड़े होकर सुनिया, वेख्या कौन है, ये तो तन्ना जट है। आख्या ओ तन्या, पत्थर ने सुनते फरियाद किसी की, तन्या पत्थर ने सुनते फरियाद किसी की। तन्ने ने अखा खोली, आखिया जाओ जी जाओ, मेहनत नहीं जाती बर्बाद किसी की। हुण अगली शाम भी पै गई, तन्ना हुण आ गया है अपने जटपुणे ते, भगवान हुण तू मेरे वल देख ले, मेरिया आंदरा हुण भुखियां बिलक रही हैं, हो सकता है तेनू पंड ने कुछ तरोताजा चीज खुआई होवे, तेनू भुख नहीं लगती। जिस तरह दूसरे दिन का दोपहर आया, तन्ना बजत बचा गया, ऐ भगवान वेख ले, मैं मर जाना है तो तैनू मार देना है, दात्री उठा ले। भगवान का सिंघासन डोल गया, एक बंदे का विश्वास देख के है, ये बंदा अपने आप अपने कले की भी दाती मार देगा, लोग मेरी होन तो मुनकर हो जावणगे कि मैं नहीं हां। पत्थर के बिचों हथ बाहर निकलिया, तने ने आख्या इवें तो गल नहीं बननी, उप ठाकर जी पंडित के सामने साक्षात बैठ के रोटी खावे, ते जट नूं कल्ला हथ हथ विखालता है, इवें तो गल नहीं बननी। हुण भगवान साक्षात रूप में आके बैठ गए, पछा छकिया। दूसरे दिन का दोपहर चढ़ चुका है, भगवान तैं मैनू बहुत भुखा मारिया, वेख आपां ने हुण कुछ नहीं करना, और वेख ला हल चलदा पिया खूह, नके तैं मोड़ने ने, गाइयां तैं चारनियां ने, जट सौण लगा खूह थले तू तंद छावे। हुण तन्ना देखता है ठाकर बोलदा नूं हक रहा है, क्यारे मोड़न जा रहा है, गाइयां नूं मोड़ के लिया रहा है। इतनी देर तू तलोचन भी आ गया, सुना दे तन्या की हाल है, ठीक है पंडित जी तुहाडी कृपा, ठाकर का की हाल है। पंडित जी जदों का तुसीं मैनूं ठाकर दिता है, मेरे घर से लहरां बहरां हो गई हैं। पंडित आश्चर्य हो गया कि जट भोला है, सचमुच दे ठाकर दे मैं अपने कोल लिता के रखे ने, मैं किसी झूठी मूठी का ठाकर दिता सी, जट है ना, पता नहीं ठाकर की हुंदा। पंडित जी तुहाडी बड़ी कृपा, तने ने उठ के नमस्कार की, पंडित जी देखो और ठाकर गाइयां मोड़न गया है, हुण देखो दूजे कैरे नूं पानी छड़ दिता है। पंडित आखदा है जेठ हाड़ दा महीना है, जट बौंदल गया है तुप्पां दे नाल। पंडित जी देखो भगवान तुहाडे नजदीक दी गुजर गए ने, तुहानूं पछाणदे नहीं। तन्ने ने आख्या, पंडित सोची पै गया है, तन्या कित्थे है तेरा भगवान, देखो ना तुहाडे कोल।

ठाकरे सौ खाते में सो तुम ठाकरे दिसता तनिया मैं उन्हें दिसता सच आखते हो हां तनिया सच आखता ठाकरे जी तुम मैनू दिसते हो इसका मतलब तुम तलोचन भी दिसते होवोगे नहीं तनिया मैं भैड़िया अखा वाले नहीं दिसता जिन्हों का मन होर भुख होर हो मैं नहीं उन्होंने दिसता फिर भगवान जे तू मेरे कोल रहना है तो फिर तुम त्रिलोचन भी दर्शन देने पैणगे तनिया नहीं यह झूठा है फरेबी है मकार है हेरा फेरी करता है मेरे नाम से नहीं प्रभु जे ए ना हुंदा तो मैनू तेरे दीदार नहीं होने हुण हुण भगवान नू तन्ने दे कारण करके त्रिलोचन नू भी दर्शन देने पए त्रिलोचन का भी दर्जा भगतां विच आ गया किहदे करके किसी ने संगत की संगत का दर्जा की होया फिर तन्ने ने मंगिया कि ਐਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਐਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਚੰਗੀ ਜੰਤ ਨਾ ਲੈ ਦੇ ਮੰਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਬਿਸਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਤਰੀ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜਦ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਥਕੇ ਮਲਕ ਜਾਵੇ ਦੇਖੇ

परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले। जे लोक परलोक सुवारना चाहुंदा है भाई, जिन्हां ने भी सुवारिया उन्हां नूं सत संगत विच जाना पिया, साधु दी संगत विच जाना ही पिया। जिवें तारा राणी सत संगत विच जाया करदी सी, राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा होया, इसकी पतिव्रता बड़े धर्म विच रहन वाली स्त्री दा नाम तारा मती सी। रोजाना पिछली रात सत संगत विच जाया करदी सी, पर राजा इस पास्यों अजे अज्ञात सी। राजा जी दे जागण तों पहला ही वापस आके अपने मंजे ते लम्मी पै जांदी। इस तरह करदियां राणी नूं काफी दिन लंघ गए। एक दिन राणी दे जाण तों पिछों राजे दी अचानक जाग खुली। की वेखदा है कि राणी कोई नहीं। राणी दा बिस्तरा खाली जान के बड़ा चिंतातुर होया कि राणी ऐस वेले किथे चली गई। राणी दे चाल चलन तो राजे नूं कुछ शक हो गया ते विचारदा है इसका भेत जरूर लेना चाहिए, ये रात नूं किथे जांदी है। दूजी रात हुई, राजा सौं गया। राणी राजे नूं सुता जान के अपने मंजे तो उठी, खरावां पा के इशनान वाली जगह पर आई ते इशनान करके वस्त्र बदले, फिर साध संगत विखे जान लई तुर पई। राजा इसते सारे करतब नूं देखदा रहा, पर जिस वेले राणी तैयार होके महलां चों बाहर निकली तां राजा भी मगर मगर तुर पिया, भई किथे जांदी। जिस वेले राणी अपनियां खड़ावां ला के संगत विच जाके बैठी, तां मगरों राजा उसकी खड़ाम चुक के महलां विच लै आया ते कपड़े विच लपेट के संदूक दे विच रख दित्ती ते बाहर जंदरा मार दित्ता। इधरों सवेर दे समय दीवान दी समाप्ति होई और संगत उठ के आपो अपनी घरी जान लगी। राणी मत्था टेक के बाहर निकली तां की तकिया, एक खड़ाम है नहीं। मन विच विचारिया, जे एक खड़ाम लै गई घर तां पुछ होवेगी, राजा पुछेगा कि दूसरी खड़ाम किथे, ते जे तू बाहर नहीं निकली तां घर विच किथे गायब हो गई। राणी मुड़ के साध संगत विच आके बेनती कीती कि मेरे लिए अरदास करो कि मेरी खड़ाम लब पवे, मते मेरे परम पति राजा नाराज ना हो जान मेरे नाल। सात संगत बोलो श्री, जां एक मन होके एकाग्र चित होके संगत ने अरदास कीती, वाहिगुरु ने आप कृपा करके उस दे नाल दी पुरानी खड़ाम जोड़ी जुड़ी खड़ाम पुरानी बार की तकिया जोड़ी खड़ावां दी पई है। राणी खुशी खुशी घर नूं आई। राजा इस गल दी उड़ीक विच सी, भई आवेगी तां पहला सवाल ए करांगा कि तेरी खड़ाम कित्थे है, उच्चारण करो श्री। पर जदों घर आई खड़ावां दोनों ही पैरियां हुईयां सन। राजा हैरान हो गया, भई कोई नवी भी नहीं है, पुरानी दे नाल पुरानी मिली है। आख्या ये खड़ाम, एक खड़ाम तो मैं तेरी चुप के लियांदी ते ये कित्थों आ गई, उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। राणी दे नैन कटोरे भर आए। आख्या राजा मैं रोज सत संगत विच जांदी हां ते नित नेम करदी हां, तेरे लिए भी परमेश्वर कोलों खुशियां मंगदी हां, अपने लिए भी मंगदी हां, तेरे लिए भी अरदास करदी हां कि वाहिगुरु तेरा भी लोक परलोक सुहारे ते मेरा भी सुहारे। राजे ने जदों ऐसे वचन सुने, मन ऐसा प्रभावित होया कि फिर जितना समा संसार ते रहा, धर्म दा राज कीता,
ਅਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਭਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ।

जैसे सर्प दी आरजा है किसे काम नहीं, और बड़ी वड्डी आरजा होंदी है सप दी। अजगर सप्पां दी सैकड़े हजारां वर्ष आरजा होंदी है। आख्या साकत दी भी इसे तरह ही आरजा, जिस तरह ओ किसे काम नहीं आउंदे, बिना नाम तो मनुख भी किसे काम नहीं है।

बहुत प्रसाद करावे पाठ करावे पर जे निंदा हो गई ओ भी किसे महापुरुख दी ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फसे।

अपने शब्द विच फरमान कर देंगे। निंदक दी ए निशानी है, जदों किसे दा भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा, ते जदों किसे दा बुरा हुंदा वेखेगा उदों प्रसन्नता विच आंदे खुशी।

मोहम्मद बिन तुगलक ने नामदेव नु पुछया, ऐ नामदेव मैं हिंदुस्तान दा बादशाह, तू मेरे कोलो डरदा नहीं, किदे भरोसे ते तू अपना जीवन बताना है।

सराय चा बड़ा वटा छम्याना है तंबू है केड़ा ऐ बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लवाना है।

सरायचा है, तंबू है, इंसान जहाजा ते चढ़ लवे, राकटा ते चढ़ लवे, कितना भी यतन कर लवे, पर इस परमेश्वर दे तंबू विचू इंसान बाहर नहीं निकल सकता। ओदे घर विच बैकुंठ है, अते सपत लोक समान पूरी आले, ए जड़े पताल ने ए ओदे घर विच

मौत है, उस गोपाल राय दे कार खेड कर दिए, कदी किसे नु मार देंदी है, कदी किसे नु मार देंदी है। इस करके ओ जिड़ा मेरा गोपाल राय है, जिदे कार सूरज चंद्रमा दीवे तरह ने, मौत जिड़ी है ओ दे कार

मैं सुने अल्लाह तेरा यार है, तू जो कहना है परमेश्वर कर दिंदा है। ते मैं तेरे राम दे कम देखना चाहना, जो बादशाह ने कहा भगत नामदेव ने बाणी च बयान किया कि बादशाह कहन लगा ए नामदेव ए गां मरी हुई पई है, इस नु जिंदा कर दे, जे गां जिंदा ना हुई ता मैं तेनू जानू मार देंगा। नामदेव जी बादशाह दे ख्याल ते अपनी विचार शब्द विच इस तरह

कैद खाने पा दिता गया, सत घड़ियां दा समा दिता, पर सत घड़ियां बीत गई, गऊ हाली तक जिंदा नहीं हुई। भगत जी आप बयान करते हैं।

का नाम देव जी ने किया ऐ परमेश्वर, और कुछ ना कर बस गां जिंदा कर दे। परमेश्वर ने कृपा की थी ते मरी हुई गां जिंदा हो गई, वच्छे समेत ते नाले दूध दिया

खुश होके भगत नामदेव ने बहुत सारा सोना चांदी भेट किया, पर नामदेव जी ने उस सारा सोना चांदी गरीबां च वंड दिता। आप तो रुपए बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो, सेज कह लो, बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारियां नु दिती। बादशाह ने दरबारियां नु कहा, जिथे नामदेव जी बैठन ऐसे जा नामदेव नु भेट कर देनी, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि ऐसे जा किसे नु दान नहीं करनी, ए वशा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पए, नाल बादशाह दे दरबारी तुर पए। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने।

कीमती से जा तुसा आप वर्तनी है संभाल के रखनी। नामदेव जी ने ओ कीमती से जा चुकी ते नदी विच सुट दिती। दरबारी वापस चले गए। बादशाह नु बेनती कीती, बादशाह भगत जी ने तुहाडी से जा पानी विच सुट दिती। बादशाह नु बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, पर कर कुछ नहीं सी सकदा। दरबारियां दे नाल फिर बादशाह उस नदी किनारे भगत नामदेव दे कोल आया ते कहन लगा, भगत जी मैं बड़ी श्रद्धा नाल सीजा दिती सी, तुसा नदी विच सुट दिती। नामदेव जी कहन लगे, बादशाह तू संभालण वास्ते कहा सी, असी तेरी सेजा पानी विच संभाल दिती। बादशाह कहन लगा, महाराज जे संभाली है ता मैनू एक बारी दिखा दियो ताकि मैनू तसली हो जावे। उस वक्त भगत नामदेव जी कहन लगे, चंगा फिर बादशाह अपनी सेजा देखनी है ता पानी दियां लहरां वाल तक, जदू तेरी सेजा आवे ता पहचान लवे। बादशाह पानी दियां लहरां वाल तकन लग पिया।

भगत नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान, ता कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती। अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर।

ख्याल हो जाए तां इंसान बैराकी हो जांदा है, परमेश्वर दे नाल जुड़ जांदा है। गुरु दयाल हो जाए तां पराई निंदा आदमी छड़ दिंदा है। गुरु दयाल हो जाए हर पासे उन्हूं परमेश्वर दी जोत नजर आंदी है। जे गुरु दयाल हो जाए ते मत्थे दे लेख जिहड़े ने ओह भुगता दिंदा है।

जे गुरु दयाल हो जाए देहोरा फिरे देवरा कहते ने मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा नामदेव नू जदों पंडता ने नीवी जायदाद समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता तो भगत जी कहंदे ने

अवर नहीं जाए, नाम देओ गुरु की शरण आए। ए नाम देव ऐसे गुरु की शरण विच रहिंदा है, जेड़ा गुरु इन्ना कुछ देंदा है उस तो बगैर ए नाम देव किसी होर की शरण नहीं लेंदा।

उस परमेश्वर दे घर की है। भगत जी ने बयान किया, जांचे कर निकटवर्ती अर्जन, ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद नेजे, सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला, एते जी जांचे हैं करी, सर्व व्यापक अंतर अरे, प्रणवे नाम देओ तांची आन, सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह, ओ परमेश्वर, इतना बयांत है, ए जो मैं दस्य है, ए ता कुछ भी नहीं, सब कुछ होद है, ओ बनान वाला है, प्रणवे नाम देओ तांची आन। नामदेव आखद है, ऐसे गोपाल राजे दी असी शरण विच हां, ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लैंदी है। इस करके भाई, राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो, क्योंकि उस गोपाल राय तों कोई भी वड्डा नहीं।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरा। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा। जी मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होता, मेरा काम इन्ना है। ओ भलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनूं गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया, दतारा देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण तावी मूर्ख लोग अजान, ये मूर्खां दा काम है। सुख आंदियां भी देर नहीं लगदी, जांदियां भी देर नहीं लगदी। जे तेनू गुरु ने तन दिता है, कारोबार बढ़ा दिता है, सगों होर गुरु दा धन्नवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार विच बैठे सन, की तक रहे ने। एक कीड़ा दीवार ते चढ़दा है, फिर थले डिग जाता है। इहदे वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़दा है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी इहदे वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसण लग पए। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखण लगे ऐ की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है, डिग जांदा है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? इह ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखण लगे, हसण वाली गल ए है, इस जीवन तो पहला ना ए एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा वड्डा राजा सी, इंद्र जिस दा नाम सी। इन्हें सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ये 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है। ते मैं हसदा ता हां, ऐ भलिया तेनू धन भी दिता, सोने महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भुलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्नवाद करना चाहीदा है। नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है ओह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तेनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बांधिए जे रहना होए, बहुता कुछ उत्थे बणाईदा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात मार रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्ने चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा किथे तेंडे मापिया, भी किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने। इस तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा,
ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲਹਿ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਬੇਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ।

ए पावन पवित्र शब्द आसा महला पहला धन गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया है। जिस शब्द अंदर सतगुरु सानू उपदेश देते हुए एक गल समझा रहे ने, कहते ने हे मनुख हे इंसान जोत वेख जात ना पुछ, क्योंकि साडा संबंध जोत नाल है जात नाल नहीं। जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत जोड़दी है। दोनों गल्लां दा ख्याल रखना। जोत पुछण करके निकटता आउंदी है, जात पुछण करके मनुख मनुख तो दूर हो जाता है। हुण यह बचन सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने आख्या नहीं करके दिखाया, जाणो जोत ना पूछो जाती, जोत वेख पाई जात ना पुछ, क्योंकि जात ने हमेशा तोड़िया जोड़िया नहीं, ते जड़ी जोत है वो एक कर देंदी। हुण सतगुरु उपदेश देंदे हुए समझा रहे ने कुछ गल्लां, आपदी चोली पावां।

गल राम दे नां दी है, पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला ले। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहिंदे ने